0: एक महीना को पहिलो शनिवार शहीद मेमोरियल अस्पताल धादिंग सीमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउनु होस्।
1: इस स्वास्थ्य परीक्षण में पारण स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान का वरिष्ठ मानसिक रोग विशेषज्ञ डाक्टर नवीन लेखक बाट स्वास्थ्य परीक्षण गरिन्छ।
0: फेरी सुन्नुस् है त, शहीद मेमोरियल अस्पताल धादिंग सीमा हरेक महीना को पहिलो शनिवार मानसिक रोग वरिष्ठ मानसिक रोग विशेषज्ञ डाक्टर नवीन लेखक बाट स्वास्थ्य परीक्षण गरिन्छ।
1: थप जानकारी को लागि 010-520-238 र 010-520-263 मा सम्पर्क गर्नुहोस्।
0: स्वस्थ समाज निर्माण को लागि शहीद मेमोरियल अस्पताल प्रणाली धादिंग द्वारा जनहित में जारी संदेश।

0: मेजरिंग टाइम चेक अहिले ठीक 8 बजेको छ एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
1: रेडियो धारी समय संकेत
2: अहिले बिहानको 8 बज्यो

0: कोई हम पाई पन पाई छ
1: अधिकारी सप्लायर्स नीलकण्ठ नगरपालिका तीनू पुछार बजार धादिंग किलो बोरिंग नजिक प्रोपाइटर त्रिलोचन अधिकारी र माधव अधिकारी सम्पर्क फोन नम्बर 0251-4038 मोबाइल नम्बर 98-40-39-46-56
2: समुदायका लागि समुदायको आवाज रेडियो धादिंग 106 मेगाहर्ज

0: रिलायंस फाइनेंस लिमिटेड वित्तीय सेवा को अर्को परिभाषा
1: समुदाय का लागि समुदाय को आवाज रेडियो धादिंग 106 मेगाहर्ट्ज़।

0: ढुक होइन ढुक्क हुँ प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्सुरेन्स के अभिकर्ता बनौ
1: प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्सुरेन्स लिमिटेड
2: समुदायका लागि समुदायको आवाज रेडियो धादिङ 106 मेगाहर्ज

0: कालो पाइप मार्बल ग्रेनाइट टाइल पाइन को साथ ही पाइप फिटिंग में 50 वर्ष ग्यारेन्टी बाथरूम फिटिंग में 10 वर्ष ग्यारेन्टी दक्ष पलम्बर तथा पेन्टर द्वारा पाइप फिटिंग पेन्टिंग संबंधी संपूर्ण काम
1: गरिन्छ।
0: ए सुन्नु त बहिनी, त्यहाँ अर्डर अनुसार डीडब्ल्यूसी प्लास्टिक को ह्यान्ड पाइप पनि पाइन्छ है।
2: अधिकारी सप्लायर्स नीलकण्ठ नगरपालिका तिनु पुछार बजार धादिङ किब बोर्डिङ नजिकै प्रोप्राइटर त्रिलोचन अधिकारी र माधव अधिकारी। सम्पर्क फोन नम्बर 0105214038, मोबाइल नम्बर 9840394956।
3: समुदायका लागि समुदायको आवाज, रेडियो धादिङ 106 मेगाहर्ज।

0: 香烟
1: Extreme Energy Drink
0: समुदाय का लागी समुदाय को आवाज रेडियो धादिंग 106 मेगाहर्ट्ज।

0: पार्टी घर को कैंसर को जांच वरिष्ठ रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर क्रिस्टल केसी द्वारा वीडियो एक्सरे एनामोली स्कैन थायराइड स्कैन शरीर में जुनसुकी स्थान में वीडियो एक्सरे सेवा दीपमाला लाइफ केयर सेंटर प्राली धादिंग देशी त्रिवेणी चौक पुरानो सीपी कलेज को भवन संपर्क फोन नंबर 0105213667 9841 0063 243 र 9843 40 33 23।
1: समुदायका लागि समुदायको आवाज रेडियो धादिङ 106 मेगाहर्ज।

माता पिता शर्मा दिने रामा जन्म दिने माता पिता शर्मा दिने रामा न सके मामा।